0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: हमास के एक वफ़द ने कहा है कि वह काहिरा में मिस्री हुकाम और सालिसों के साथ गजा में जंगबंदी के माहिदे पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत करेगा। सियासी मुशीर ताहिर अल नूनू के मुताबिक हमास ने कहा है कि एजेंडे का मरकज गजा में इसराइली खिलाफ वर्जियों, रोज़मर्रा के कत्ले आम और टारगेट किलिंग के बढ़ते हुए वाकयात को रोकने पर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रुप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और तामीर नौ के सामान की फराहमी की जमानतें हासिल करने की कोशिश करेगा, जिसमें हस्पतालों, नानबाइयों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए दरकार मवाद शामिल है।
0: अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस ने कहा है ईरान की तरफ से दोहा मुजाकरा को मुस्तरद करना ईरान का एक मुजाकरती हरपा है। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस ने कहा है दोहा में जारी मुजाकरा से ईरान का अवामी सतह पर इनकार एक ईरानी मुजाकरती हरपा है, जबकि उन्होंने इस बात की तस्दीक की वाशिंगटन तेहरान के दरमियान तकनीकी बातचीत का अमल जारी है। नायब सदर ने कहा मौजूदा माहदे को आगे बढ़ाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर तयशुदा तकनीकी मुजाकरात बुध को सर अंजाम पाएंगे। उन्होंने तेहरान के अवामी बयानात को दिलचस्प मायूस कन करार देते हुए कहा ईरानी हुकाम मुज़ाकरात का इनकार लेकिन तकनीकी बातचीत का इतराफ़ करते हैं।
1: नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे का कहना है कि तुर्की इत्तेहाद की सबसे मजबूत फौजों में से एक है, रिहाई बेहतर साजो सामान से लैस और तरबियत याफ्ता है और एक वसी दिफाई

0: सनत का मालिक है। मार्क रूटे ने 7-8 जुलाई को मुनक़िद होने वाले अंकरा सरबराह इजलास से कबल ब्रसल्स में नेटो हेड क्वार्टर में ए के सहाफ़ियों के सवाल के जवाब दिए, जिनमें इजलास से तवक्कुआत इत्तेहाद के सामने बुनियादी आजमाइशों और तुर्की के नेटो में किरदार शामिल थे। मार्क रूटे ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जब लोग अंकरा इजलास की तरफ देखेंगे तो कहेंगे कि यह वो इजलास था जहाँ किए गए वादे अमल में लाए गए। हमने हेग में जो वादे किए थे, अंकरा का इजलास निफास का इजलास होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि नेटो इस ढांचे की नुमाइंदगी करता है जो अमरीका पर हद से ज़्यादा मुनहसर नेटो 2.0 से मुख्तलिफ होगा। अमरीका अपनी रिवायती फौजी सलाहियत और जौहरी रोकथाम के जरिए यूरोप में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगा। तहम आइंदा मरहले में हम एक ऐसा नेटो देखेंगे जिसमें यूरोप ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएगा। यह ज़रूरत यूक्रेन के रूस के खिलाफ जारी जंग की वजह से भी पैदा हुई है। हम रूस के बड़े पैमाने पर फौजी इज्तिमा के मुकाबले में गैर जानबदार नहीं रह सकते। यह सूरत हाल सिर्फ यूक्रेन के तनाजुर में नहीं, उमूमी तौर पर भी दुरुस्त है। अगर हम चाहते हैं कि आइंदा नेटो मुमकिन हद तक मजबूत रहे तो हमें ये इकदाम उठाना होंगे। यह सब इस बात का मतलब है कि नेटो में बोझ की तकसीम ज़्यादा मुनसिफाना होगी, जिससे वो कहीं ज़्यादा मजबूत बनेगा, रूस के खिलाफ अपनी रोकती क़ुव्वत में इजाफा करेगा और चीन के मामले में भी यक तरफा रवैया इख्तियार नहीं करेगा।
1: यानी शहर थेसलोनी के करीब वाक़ दोरिनी के इलाके में गुज़िश्ता रोज लगने वाले जंगलाती आग में जान नुकसान 2 तक पहुंच गया है। यूनानी सरकारी नशरियाती इदारे ERT की रिपोर्ट के मुताबिक जिस मकाम के करीब गुज़िश्ता रोज एक शख्स की लाश मिली थी, इस इलाके में जंगल के अंदर वाक़ घर से 12 साल बच्चे की लाश बरामद हुई है। घर से निकलकर जख्मी हालत में जान बचाने में कामयाब होने वाली खातून ने फायर ब्रिगेड के अहलकारों को बताया वो अपने शोहर बच्चे को घर में छोड़कर बाहर निकली थी। वो काम की जान से की तहकीकत में मालूम हुआ कि घर मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आकर तबाह हो चुका है।
0: मैक्सिको ने एस्टाडियो अज़्तेका में इक्वाडोर को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई और 1986 के बाद पहली बार नॉक आउट मरहले को अबूर किया। तकरीबन 1 घंटे की बिजली की वजह से ताखिर ने मैच के आगाज को मौखर कर दिया, मगर उसने मैक्सिको सिटी में जोशीले हुजूम की आवाज़ को ना दबाया और मैच का आगाज़ होते ही तमाशाइयों ने अपने खिलाड़ियों के दिल खोल कर हौसला अफजाई की। जूलियन क्विनो नेज़ ने 22वें मिनट में शानदार शॉट से गोल किया और 9 मिनट बाद राहुल खेमेनेज ने दूसरा गोल करते हुए मैच के इब्तदाई लम्हात में ही मुस्तहकम पोजीशन तक पहुंचा दिया। मैक्सिको की वाहिद साबका वर्ल्ड कप नॉट आउट फतह भी 1986 में अज़्तेका में हुई थी, जब उन्होंने इसी में 0 के मुकाबले में 2 गोल से स्कोर से बुल्गारिया को हराया था, जो इसी मुल्क की आखिरी मेज़बानी वाला टूर्नामेंट था। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

जब हम किसी नक्शे को देखते हैं तो वहाँ मौजूद ज़्यादातर नामों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते। पहाड़ों, दरियाओं, शहरों या मुल्कों के नाम होते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे ये नाम हमेशा से ही वहाँ मौजूद थे। हालांकि हर नाम की अपनी एक अलग कहानी होती है। कोई नाम किसी हुक्मरान के फैसले से एक ही रात में वजूद में आ जाता है तो कोई उस सरजमीन पर रहने वाली किसी कदीम कौम की यादगार बनकर रह जाता है। और कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो हज़ारों साल तक ज़बाँ ब ज़बाँ और नक्शे से नक्शे पर मुंतकिल होते रहते हैं। आज हम जिस कहानी के पीछे निकल रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी ही है। ये सिर्फ एक लफ्ज़ की कहानी है, फिलिस्तीन। आखिर ये नाम पहली बार कब और कहाँ सामने आया? इसे सबसे पहले किसने बोला और किसने लिखा? और ये इतनी सदियों तक नक्शों से क्यों नहीं मिट सका? दरअसल हमारा बुनियादी और असल सवाल ये है, ज़मीन का एक टुकड़ा तारीख में कितने मुख्तलिफ नाम अपने दामन में समेट सकता है? इस प्रोग्राम में हमारा मकसद सिर्फ बड़े तारीखी वाकयात को बयान करना नहीं है, बल्कि हम उन तफसीलात और छोटे छोटे इशारों पर नज़र डालेंगे जो आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। हम पुराने नक्शों का जायज़ा लेंगे और पत्थरों पर खुदी हुई तहरीरों को पढ़ेंगे। हम उन भूली बिसरी ज़बानों के निशानात तलाश करेंगे और ज़मीन दोज़ कदीम शहरों की सैर करेंगे। हम कदीम बंदरगाहों का रुख करेंगे और पुराने काफ़िलों के रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे दिलचस्प कहानियाँ इन चीज़ों के अंदर छुपी होती हैं जिन्हें हर कोई पहले से जानता हुआ समझता है। और हमारे इस सफ़र की पहली मंजिल यही नाम है, यानी फिलिस्तीन। ये जानना फ़ायदेमंद है कि आज हम जो लफ्ज़ फ़िलिस्तीन इस्तेमाल करते हैं वो आम तस्वुर के बरअक्स कोई हालिया तारीख का नाम नहीं है। जब हम इस लफ्ज़ के निशानात तलाश करते हैं तो हम आज से तकरीबन 3,000 साल पीछे चले जाते हैं। मुहक्किकीन को मिस्र की इबादतगाहों की दीवारों पर बने हीरो गलीफी खताती के नक्शो नगार में एक लफ्ज़ मिलता है, पैलेसेट। मुअर्रिखीन इस नाम को इन ग्रोहों में से एक से जोड़ते हैं जिन्होंने उस दौर में बहिरा रूम को अबूर करके इन साहिलों पर सकूनत इख्तियार की थी और जिन्हें समुद्री अकवाम के नाम से जाना जाता है। बहुत से माहिरीन के मुताबिक नाम फिलिस्तीन की कहानी बिल्कुल यही से, यानी इन्हीं साहिलों से शुरू होती है। लेकिन मामला इससे थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि ये सरजमीन नक्शों पर फिलिस्तीन के नाम से दर्ज होने से बहुत पहले भी जानी जाती थी। एक वक्त था जब इसे कनान कहा जाता था। दूसरे अदवार में मुख्तलिफ मिट्टी की तख्तियों पर अमूरों का नाम भी मिलता है। इस खित्ते से गुजरने वाले ताजरों ने अलग नाम इस्तेमाल किए और हमसाया सल्तनतों ने अपने रिकॉर्ड में मुख्तलिफ नाम लिखे। जैसे जैसे सल्तनतें बदलीं वैसे ही सरहदें और नक्शे भी बदल गए। लेकिन ये जुग्राफिया खुद हमेशा एक जैसा ही रहा। बहिरा रूम के मशरक़ी साहिल पर वाक़ ज़मीन की ये तंग पट्टी तारीख भर में दुनिया के मुतहरक तरीन गुजरगाहों में से एक बनी रही। सदियों बाद तारीख के स्टेज पर रोमन सल्तनत नमूदार हुई। रोम सिर्फ एक ऐसी फौजी ताकत नहीं था जो शहर बसाता और सड़कें बनाता था, बल्कि वो उन जगहों को नया नाम भी दिया करता था जिन्हें वो फतेह करता था। और बाज़ औक़ात एक नाम फौजों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तवील उम्र पाता था। ईसवीं सन की दूसरी सदी में हमें रोमन रिकॉर्ड में एक नया नाम नज़र आने लगता है ईसवीं सन की दूसरी सदी में हमें रोमन रिकॉर्ड में एक नया नाम नज़र आने लगता है सीरिया पैलेस्टीना। यह नाम वक्त के साथ साथ सरकारी दस्तावेज़ात में शामिल हो गया, नक्शों पर उतारा गया और जुग्राफिया की किताबों का हिस्सा बन गया। रोमन सल्तनत के जवाल के बाद भी सदियों तक इस सरजमीन को इसी नाम से पुकारा जाता रहा। दरअसल सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया में हम जो बहुत से ममालिक या शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं वो तारीख के धारे में कई बार बदले, भुला दिए गए या उनकी शक्लें बिगड़ गईं। लेकिन फिलिस्तीन का नाम मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ अंदाज से अदा किए जाने के बावजूद किसी न किसी तरह अपना 3,000 साल सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। यह नाम एक जुग्राफिया और एक मुश्तरका याददाश्त की सूरत में आज के दौर तक पहुँचा है।
آنے والی قسطوں میں ہم مل کر اس یادداشت کی مختلف تہوں کو دریافت کریں گے، ہم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک یعنی اریحا جائیں گے، ہم مٹ جانے والے رسم الخط کا جائزہ لیں گے اور یروشلم یعنی قدس کے نیچے بنی خفیہ سرنگوں میں اتریں گے، ہم آسمان کا مشاہدہ کرنے والے دانشوروں سے ملیں گے اور ہزاروں سال پرانے زیتون کے درختوں کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہر سفر کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، ہمارا آغاز بھی آج کے اسی سوال سے ہو رہا ہے جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ایک نام کسی سرزمین کی روح کو کتنے عرصے تک محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اگلی قسط میں ہم اس سرزمین پر گونجنے والی پہلی زبانوں کو سنیں گے، ہم کنعانی، آرامی اور ان قدیم رسم الخط کی کہانیوں پر بات کریں گے جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ کھو چکے ہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔